为说太叔同学们操作铁丝给了喂黑了摩机当面的给我的给机我的心里什么都回来了八将军不要贴单了多少个人黑黑了为说公孙的片아흔저랑이이래게볼지다이소도심을대허이골내게지리기하리알조홀달아보지월시르시키이디지월바구홀게월시르애노때리울은어슨사우송그지하리아지리해노소사우손테스클로게힐링소지탄에버틴애들리벨동실지엠드로해떠두기달랏대회두시오지볼소이셔범벨도셔슨소르고엠드리오지스मेरे और दासी असर गोले यस्तन उनरन उलुगे है उदरी उदरी लेना उजनी उरुस्ते अशुर है वाला बोले पुयो लेना रे बातनी छासर है उदरी छागिन लेना उजनी शारुनस्ते अशुर है वाला बोले पुयो लेना रे बातनी सुसिस हुए हमोनी काशकोनी की मत्वा सुरगु ते और फा वाला बोले यही मत्वा फल गैसी नेलख्त बोले पासीन हमरी दालांगिच नेमेते बेल दरायस्तन बेल दुश公孙两人转着哈嘎人个去呼吸着个一路见下头了树叶耳朵伸个门内去黑门还有两杯耳门啊很多大碗黑的树一江中草子摸到个人阿爸是不是特色呢公孙的平音听着我那个他是不是我那个树叶他们转身转打了去다시전한험질지홀가시리기알기지베레루스타번존실득실군제딜디기오르기지악당홀기과에대지알아기세한다고니니아잉완도선내들디악을발아디다이샤는머룩을집에가야들라알므스돌번들에기니랑쇼흑제에가들디알다시리긴돈들에알아떠셔알라슈자공손병내건다알기디식슨헐단홀실긴다트라시홀똥홀똥몇대근회사나니윽다들야샤후룽바라장원회나르디모돌게요특클의후룽장원회나로위양시나대가지해놓으네벨도시도시멀공손량아무도대간고름맹은실같이위치신다버릇마렌샤나리벤죽제지가비야베굴하르것이지은디렛우려승후근알로승쇼임쇼임후룸발라장원회나일도르그치치르긴돈다스깔지라두증을해우자사사우순호역실기이런야신알자허발발호친산독이야타디야근덧은애들디홀하글리홀스허시게들훈틀원틀어느가사라가고르면덤네웃으러열러쇼예후룸젤릉볼같이차타라지고르면덤이여러곳가도탈알은벗을아르바누딘비흑슨마이후진어리흠따다오태근샵시땅공베스탄하름딱그르딱그르벗을따지벗기아르가우르슨속탐보로다운드르째땐째들라우두웨브헤우셔트니벗기아르가우스두지벌하름아우지름으로트니베름틀기또라르헤르소리고르빈덩문쉐르까토른내간타벗을르르쇼예고르빈덩내던다분전시르기바스훈등원가셰스케헬과사우소니네게마스큰아라쇼디과일같을해버리알이가슨사나아일해긴부르아무를랭도우뇨아떼자라그지아흐티나스가갓